0: आपको गवर्नमेंट दे रही है लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप पीआर है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, आप अपना घर का खर्चा चला पाए, उस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर, तो आप हमें कॉल करें। प्रॉपर ऑफिस है, 8 साल में हम इतने लोगों को, हजारों लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, बाल सफेद हो गए हैं, कोई भी चलाकी या मीठी बातें नहीं है।
1: अच्छा, इतने लोगों को हेल्प कर चुके, बाल सफेद हो गए आपके?
0: हाँ जी हाँ जी, 34 ईयर्स की एज में भी सफेद हो गए लगभग 70%।
1: अच्छा, क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, सफेद हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हो। सो सरांश, इंटरेस्ट रेट आप क्या बोल रहे थे, कितना इंटरेस्ट रेट है इसका?
0: हाँ जी, शुरू में अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक ब्याज है 0%, 2.5 साल बाद जाके ब्याज है 2.5% पूरे साल का, मतलब $1,00,000 का ब्याज महीने का सिर्फ $200 है। और मतलब अगर आप पैसे नहीं दे पाते गवर्नमेंट को, आपका लोन डेफर हो जाता है, ये नहीं कि आपकी गाड़ी उठा लेंगे, घर उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिल सकता। है लोन, लेकिन ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिल सकता। कॉल करें, अभी कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए।
1: सरांश, कोर्स केड़े केड़े ने थे की ऑनलाइन ने?
0: मोस्ट पॉपुलर है जी बिजनेस का प्रोग्राम, 2 साल का है, फंडिंग आपको 2 बार आती है, डबल फंडिंग आती है, और फुली ऑनलाइन ने सारे कोर्सेज, एग्जाम्स नहीं है, इजी टू पास है, तो मतलब बहुत लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, पीछे ना रहिए, फंडिंग हासिल करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, ग्रोसरी करें, आपकी इच्छा।
1: वेरी गुड। एंड सरांश, थोड़ी कितनी फीस है?
0: काम होने तो बाद $199 फ्लैट फीस काम होने के बाद में है, शुरू में तो कुछ है ही नहीं सर, हमें अपने काम पे भरोसा है, और बाद में क्लाइंट्स अपनी ईमानदारी रखते हैं, हमें हमारी फीस इंट्रैक्ट या कैश के रूप में ऑफिस दे जाते हैं। प्रॉपर ऑफिस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, आप आए, हाई क्लास जगह पे ऑफिस है जी, ये नहीं कि आप, लोग हमें कहते हैं सर हमारा पुराना एजेंट हमें टिम हॉर्टन्स पे कोट पैंट पहन के मिला था। हमारा प्रॉपर ऑफिस है, काम होने के बाद छोटी सी फीस लेते हैं, कोई मीठी बातें नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं है।
1: वेरी गुड। नंबर है सरांश दा 4372643175 4362641375। सरांश, हुण अजकल कैनेडा अमेरिका दे आपस विच जो भी लड़ाई चल रही है, इकॉनमी ते बैंक्स भी टाइट हो रही ने, सो इस लोन दा दे उत्ते की असर है उस चीज दा?
0: अभी तक कोई चेंज नहीं है, बट यस, हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है एडुकेशन में। तो अगर आप आज एनरोल करते हैं, आपको पूरा फंडिंग आएगा, मतलब अगर हमने आपको 1.5 लाख 2 लाख का असेसमेंट दिया है, आपको उतना ही आएगा। बट यस, अगर आप, अब नेक्स्ट पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट का होना है अगस्त 2028 में, तो अगर आप 3-4 महीने बाद आएंगे, तो आपकी जो 4th इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट से आपके खाते में डायरेक्ट आनी है, उसमें शायद थोड़ी सी कम आए ज्यादा आए, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट पॉलिसी जो अगस्त 2028 में आएगी। तो पीछे ना रहिए, जो लोग सेकंड कोर्स चूज करना चाहते हैं हमारे पास आइए, फीस सबसे कम है, ऑनलाइन कोर्सेज है, एग्जाम्स नहीं है, और मतलब कॉलेज की फीस भी सबसे कम है, तो मतलब ज्यादा पैसा हमारी जेब में नहीं, आपकी आपकी आपकी जेब में।
1: नंबर एक क्विक है, सॉरी सरांश, नंबर है सरांश दा 4372643175 4362641375 4372643175। कॉल करो, लोन दी जानकारी लो, 0% ते लोन मिल रहा, 4372643175। सरांश, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू जी टाइम के लिए।
1: वेरी गुड। ओके नवी जी, सारे मैसेज देते, ओके ओके ओके, आ भी देता हूं। फ्रेश फूड सेंटर, वाह भी वाह, फ्रेश फूड सेंटर तक जाओगे ग्रोसरी कर, इन्नी फ्रेश, इन्नी टॉप दी क्वालिटी, कैलडन दा टॉप दा ग्रोसरी स्टोर, 12570 कैनेडी रोड, फ्रेश फूड सेंटर ते तुसी जरूर पहुंचो, फ्रेश फूड सेंटर। एक मैं नाल दी नाल तुहानू फ्रेश एयर डक्ट क्लीनिंग दा भी नंबर दवां, तुसी डक्ट क्लीनिंग हजे भी नहीं कराई, इन्नी डिले ना करया करो यार, हुण नूं तां बड़ा कुछ हो जाणा सीगा। सो फ्रेश एयर डक्ट क्लीनिंग 4376887750। थोड़े डक्स, थोड़े वेंट्स जड़े ने, हुण एसी चलिया पूरी समर, राइट, सो इन्नी डस्ट है वेंट्स डक्ट्स दे विच, जदों कैमरा पाके तुहानू दिखाउणगे तुसीं आप कहोगे यार ये भाई तां बड़ी गलत गल है। सो तुसीं जरूर डक्ट क्लीनिंग कराओ, 4376887750 4376887750 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਕਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नो दिखाने के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वे जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगो शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे ले तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर। टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है। स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च, स्टील्स एंड मेलनी, रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग। 905-799-1478-905-799-1478-1498-1499-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1 ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਟਿਊਨ ਚਲਾ ਤੀ ਗਾਣਾ ਚਲਾਇਆ ਨੀ ਸਵਾਲ।

0: ट्रक कारा लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहिंदियां की करां
1: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
0: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
0: 905-459-5533
1: 905-459-5533
0: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट

मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंतना कोए करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडा सारयां दा स्वागत करदी हां तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ ते।

0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत की थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए पहाच बहापा. मैं आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप फेस इंश्योरेंस।
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुन चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू अगड़ाता वधिया ते जायज रेट कितों मिलेगा
2: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
3: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
2: कॉल करो 20 सालों दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नु 6473300
3: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
4: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर दे हन लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गवांड भी बहाने नाल तुहाडे घर आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
5: दोस्तों ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਮਨਸਰਾਜ ਹੰਸ
6: Toronto get ready Punjabi Virsa Radio and Television Realtor Rav Singh Cellular Points A to Z Kitchen Cabinet and Realtor Harp Garimal present the sensational Hans

0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी कुछ आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा. वे आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM.

0: पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखे स्टार इमिग्रेशन,
1: स्टार इमिग्रेशन,
0: कॉल 905-457-3131
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार,
3: टोरंटो, गेट रेडी, पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन, रियल्टर रव सिंह, सेलुलर पॉइंट्स, ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द सेंस

0: 3280
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: I am Dev Takla and you are not. Muskoka andar 1.5 acre te 2600 square foot di cottage sale te aayi hai. 3 bedroom 2 and a half washroom han. High end de furniture na fully furnished hai. $30,000 da generator ate 14 by 14 feet da pad vi baneya hai. 2 saal di navi cottage $100,000 di income generate kardi hai. 12 by 30 foot da deck hai plus walkout basement vi hai. Muskoka room vi furnish kita gaya hai. ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਚ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਗੰਦਮ 416-265-2222 416-265-2222। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੇ 416-677-0609 6700-0609। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਡੇਵ ਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ, ਹੈਵ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ।

0: दोस्तों एक बार फिर वतन दूर से स्वागत है और तुहाडे वल्लों जो टेलीफोन आ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार नंबर एक बार फिर तुहानू याद करा दें 9057990999 905-799-0999 दे उत्ते। सो नाल ही साड़ी लाइन जिहड़ी है इस टाइम जलंधर दे नाल भी जुड़ चुकी है, मनप्रीत होर आ गए ने। मनप्रीत जी जी आयां नूं
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुखी जी, सत श्री अकाल तुहानू भी और लिसनर्स नूं भी जी आयां।
0: और लो फिर मनप्रीत जी गल्लां तुसीं साडियां सुणी लईआं तकरीबन, हुण असीं तुहाडे हाल चाल पुछदे हां। पहलां तां गल आपां शुरू करदे हां जी कि एक बहुत ही भयानक सड़क हादसे दे विच तीन फैमिलियां जी, तीन बंदे ने, तीन परिवार बेचारे बुझ गए दीवे उहनां दे। ओह मनप्रीत होरी दसणगे
1: जी। सुखी जी तरन तारण जिले के खडूर साहब तो खलचिया जाते हुए सोमवार मतलब देर रात में एक भयानक जिहड़ा हादसा वापरदा है और तीन परिवार दीआं खुशियां जिहड़ियां ने पलां दे विच मातम च बदल जांदियां ने। हादसे कदों किथे हो जाने पता नहीं लगता और खास करके जदों सड़क हादसों की गल हुंदी है तां आपां जागरूक करदे रहिदा है। इन्हां हादसों दे विच तीन नौजवानों की मौत हुई है और दो नौजवान सकियां दराणियां जठाणियां भी कह लो ते सकियां मासियां दे पुत भी सीगे। सो कल्ले कल्ले दोनों बच्चे ये भी खत्म हो गए और इन्हां सकियां दोवां तो भैणां तो बिना एक इन्हां दा दोस्त सी उहदी भी डैथ हो गई। सामने आ रही गड्डी दे विच एक नौजवान सी उहदी भी डैथ हो गई। सो खबर मिलदिया सारी पिंड दे विच सोग दी लहर आ। कह कुछ नहीं सकते आपां इहो जिहे हादसिआं दे बस दुआ अरदास कर सकते हैं। जो जी चले गए ने सुखी जी वापस नहीं आउंदे पर एक कंट्रोल च कीती गई ड्राइविंग मैनू लगदा है जे सानूं मौत दे मूंह नहीं ले जा सकदी, मौत दे मूंहों बचा सकदी आ, सानूं हादसे दी घटना दा घट शिकार बना सकदी आ। हादसा जिहड़ा वापरना वापर जांदा पर कंट्रोल च जे असीं रहिंदे आ अपणीआं गड्डियां स्कूटरां कारां नूं रखदे आ तां कुछ बचा हो सकदा हादसिआं दा।
0: बिल्कुल मनप्रीत जी। और दूजे पासे एक होर बड़ा खतरनाक ही परिवार दे लिए एक सीन सी उस टाइम दा जिहड़ी खबर पहुंची साडे स्टूडियो दे विच कि बेशक सरकारां बड़े उपराले करदियां ने आवारा पशुआं नूं आवारा कुत्तियां नूं कंट्रोल करन दे लई, पर बड़े कई पूज पाठ पूजा करने वाले बंदे होंदे उह हटदे नहीं, उहनां दा साथ दिंदे आ। अज दी जिहड़ी खबर है फिरोजपुर तों पहुंची आ, फिरोजपुर शौणी एरिए तों, कि दो साल दे बच्चे नूं आवारा कुत्तियां ने नोच नोच के खा लिया जींदे ने।
1: बहुत सारियां कारवाइयां भी होंदियां पिछे जे भी तुसीं सुनिया होगा कि इंजेक्शन ला के कुत्तियां नूं खत्म किया जा रहा सी, तो दो भी जिहड़े पेट लवर सीगे उह सड़कां ते एकदम आ गए। सुखी जी बहुत सारे पेट लवर्स ऐसे होंदे ने कि उह घरां च ते कुत्ते रखदे ने पर जिहड़े गलियां दे विच कुत्ते होंदे उहनां नूं भी फूड जिहड़ा है सर्व करन दे लई जांदे ने ते उह कुत्ते गिज जांदे ने। कई कुत्ते तां ऐसे हुंदे आ कि उह गलियां दे विच दरवाजिआं अगे घरां दी राखी करदे, पर ऐसे कुत्ते उह हुंदे ने जिहड़े हलकाए होए हुंदे ने, जिहड़ा किसे भी चीज दा मास नहीं छड्डदे, हर थां ते जाके मूंह मारदे ने और खतरा बणदे ने आम पब्लिक दे लई, जनता दे लई। कोई चंगा भला बंदा जिहड़ा उह वी कुत्तिआं तों अपना बचा नहीं कर सकदा। जदों सुखी जी कुत्ते वार करदे ने उपर तां बच्चा तां फिर बच्चा सी। सो ऐसे हादसों नत्थ पाउण दे लई जे सरकार कुछ करदी आ तां उत्थे पेट लवर्स आके अपने जकारे लाउणे शुरू कर दिंदे ने। सो मैनूं लगदा है कि गवर्नमेंट दे वल्लों वी जिहड़े ने इहनां दे लई एक वक्खरे शैड बनाए होणे चाहीदे ने और जिस तरीके दे नाल जदों इहो जिहा हादसा हुंदा तां प्रशासन वी मुस्तैदी वरतदा पर फिर उह वी ठंडा पै जांदा। सो मैनूं लगदा है कि आम जनता नूं वी इह ड्यूटी जिहड़ी आ करनी चाहीदी, जे कोई गली मुहल्ले दे विच वारा कुत्ता दिसदा है तां उहदे लई तुरंत जिहड़ा आ आसे पासे दी जनता नूं भी जागरूक करवाया जाना चाहीदा है ते दी कंप्लेंट भी कीती जानी चाहीदी है ते इन्हां कुत्तियां नूं इन्हां दी बणदी जगह ते पहुंचाया जाना चाहीदा।
0: मनप्रीत जी ये तां तुसीं कुत्तियां दी गल कीती ते उहनां कुत्तियां दा की करना जिहड़े जानबुझ के कुत्ते बणदे ने, जिवें कि एक करोड़ां पति सहुरे नूं किस तरीके नाल उन्होंने साजिश च फसा के कतल किया, उह वी तां इक तरह दे जानवर ही है।
1: बिल्कुल सुखी जी, तां सच्ची च रूह कंबाऊ इहो जिहियां घटनावां हुंदियां ने कि पैसे पिछे की कुछ हो जांदा। कई वारी ना घर दे विच कोई सस सहुरा कब्बा होवे तां उस धी नूं मत्तां पता की दित्तियां जांदियां भी किन्ना क चिरिया, कोई गल नहीं, मतलब एक धी वसाउण दा तरीका हुंदा भी कोई नहीं किन्ना क चिरिया इन्हां किहड़े बैठे रहना। ते सो भाई जे उह पैसे वाला सी जां उह किसे गल तों कंट्रोल करदा सी जां उह तुहानूं खुल्ला खर्चण नूं नहीं सी दिंदा, उहदे हत्थ दे विच अपने सारी कह

0: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालों तो तुहाडी सेवा विच।
0: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-9878।
2: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए?
3: नहीं मैं मर जा उठे की होने
2: जीटीए दा सब तो स्वादला खाना उठे ही ता मिलता है। सही सुनिया भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर घुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉमिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
4: जेकर तुहाडी बेसमेंट लीक हो रही है, नहीं ठीक हो रही, तो तुहानू मैं बाई सतविंदर होना दा नाम दिना। इन्होंने बेसमेंट दे विच एक ऐसा इंजैक्शन है जिहड़ा ओह लाउंदे आ कि बेसमेंट दा खंघ जुकाम सारा ही हट जांदा। 22 साल दा एक्सपीरियंस आ बाई सतविंदर होना नू। सो 25 साल दी वारंटी भी करदे आ कि दुबारे मुड़ के लीक नहीं होगा, चाहे अंदरले पासे हो जां फिर बाहरले पासे हो, डिग करके भी तुहानू सर्टिफिकेट स्पैशल देणगे। बेसमेंट लीकिंग दा पक्का इलाज करवाउणा तां बाई सतविंदर होना नू कॉल कर लिओ। नंबर नोट कर लो, एक क्रैक आ, दो क्रैक ने, फाउंडेशन च क्रैक आ, तां नंबर नोट करो 416-451-4565 416-451-4565
2: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी। ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900।
5: जी दोस्तों, मेरे वालों यानी कि जगजीत महल वालों तुहानू सारां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी जुड़ चुके हो प्रोग्राम सारंग दे विच, तुहाडा ते मेरा साथ बनया रहेगा सही 3 बजे तक। अज दे इस प्रोग्राम विच गल्लां बातां होणगीआं, गीत संगीत होवेगा। जिवें तुसी देख रहे हो अज बड़ी सोहणी दुपहर खिड़ी होई आ। हफ्ते दा दूसरा दिन लोंग वीकेंड तों बाद सारे लोग आपो अपने कम्मां कारां दे विच महफूज हो चुके हैगे। सो कईआं दे चेहरिआं ते मुस्कान होणीआं ते कईआं दे चेहरिआं उपर उदासी होणीआं। आपां आम तौर ते सोचदे आ कि अज दा दिन मेरे लई बड़ा ही माड़ा गा, पर याद रखो दिन हमेशा माड़ा जां चंगा नहीं हुंदा, इह समें दी करवट हुंदी आ। जे अज किसे पासे कोई तंगी परेशानी आ तां हो सकदा कुछ घंटिआं तक तुहाडे चेहरे दे उपर मुस्कान भी आ जाए, ते उह तंगी आ जिहड़ी तुहाडे कोलों दूर चली जावे। सो हमेशा हसदे रहो, जिंदगी नूं इंजॉय करदे रहो, क्योंकि जिंदगी इक वार मिलदी आ, बार बार नहीं मिलदी। सो आपो अपने कम्मां विच मस्त रहो, आपो अपने कम्म नूं बड़े दिल दी गहराई तों करदे रहो। सो अज दे प्रोग्राम नूं असीं बहुत सोहणा बनाउण दी कोशिश करांगे, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਠਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।

गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
5: दोस्तों ससिका नमस्कार
6: टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर राव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द सेंस

फांसिया सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।

0: क्या बात है जी 5480 हेलो।
1: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, की हाल है?
0: वधिया सर।
1: सर एक नंबर लाना थोड़ा, फिर तो करो, विंडोज बनांदे आगे उन्हें दी ऐड आंदी जी अपने इत्थे।
0: विंडो वाले दा नंबर लिख लो जी।
1: हाँ जी
0: 647।
1: हाँ जी
0: 926।
1: हाँ जी
0: 0047।
1: थैंक यू वेरी मच सर। एक इत्थे
0: इंस्टाग्राम पेज है मैसेज कर दिया करो जे कोई नंबर चाहिए या सानू तुसी आराम नाल फोन घुमा लिया करो तो असी बिल्कुल थोड़े लिए हाजिर है। ओके अपने ना व्यामा ते बहुत बार खाना पीना चलो वेस्ट होंदा। एक बंदा ओ किसे व्याह ते गया ते ओ ना नाल कंटेनर लै गया, कंटेनर लै गया तो उन्हें चलो जी कंटेनर दे विच खाना सीगा पाके घरे लै गया। तो बड़े लोगों ने उस चीज़ नू कितना किते क्रिटिसाइज किया कि यार तू व्याह ते आया तो तू खाना लैके जा रहा घरे कि चंगा लगता, जिन्ना खाना उत्थे खा इहदा मतलब ये थोड़ा भी तैनू किसी ने सद लिया तो तू डब्बा भर के या कंटेनर भर के घरे लैके जा। कई लोग फिर भी चलो कहिंदे यार फिर की हो गया, जे जिहदा जिहड़ी फैमिली दा विआह सी उन्होंने नहीं माइंड किया तो फिर थोनू की है, नाले खाना वेस्ट होंदा। वेस्ट होण तो वधिया कि तुसी चलो एटलीस्ट खाना जिहड़ा वो डब्बियां च पा लो नाल लै जो फिर की हो गया। सो थोड़ा की ख्याल है इंज खाना डब्बे च पा के घरे लैके जाना, डज इट लुक बैड या थोनों कोई इस चीज़ नाल कोई गलत नहीं लगता? नंबर है अपना 905-673-3337 अपना नंबर है 905-673-3337। कॉल कर रहे हो होल्ड ते रहो, थोड़ी कॉल ऑटोमैटिक होल्ड ते पाई जाऊगी ते वापस आके थोड़ी कॉल्स लेने हैं। नंबर है 905-673-3337। देखते हैं जे कोई थोड़े व्याह ते आके इंज करे तुसी माइंड करोगे? जे थोनू किसी ने सद्या तुसी कदे ऐ कीता नाल कंटेनर लैके भी चलो जी साढ़े अगले हफ्ते का लंच पैक हो जूगा, डिनर पैक हो जूगा, थोड़ी कुछ कॉल्स मैं जरूर लेना चाहवांगा। विल बी बैक।

0: 2558 हेलो
1: हेलो
0: जी वेलकम
1: डॉक्टर
0: क्लीनिक वाले का जी नंबर है 437
1: हाँ जी
0: 688
1: हाँ जी
0: 7750
1: ठीक है थैंक यू भाई
0: कोई गल नहीं सर नो प्रॉब्लम सो डॉक्ट क्लीन करा लो टाइम सर करा लो 437-688-7750 सो जरूर जरूर जरूर तुसी कॉल करो तो थोड़े लिए डॉक्ट क्लीनिंग अवेलेबल एट अ वेरी वेरी वेरी रीजनेबल रेट सो प्रोग्राम पंजाबी लहरा 905-673-3337 अपना एक एक फोन नंबर है 9056733337 मैं अपडेट कर दें कि गलबात अज हो रही है कुछ एक सज्जन मित्र लेट जुड़े होंगे कोई गल नहीं फिकर ना करो जी करते हैं सारे नूं अपडेट एंड थोनों भी विच नाल शामिल कर दो उस तो पहला लै चली थोनों असी ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम साढ़े नाल जुड़ चुके ने हरजिंदर जी फ्यूनरल थोड़ा भी होना मेरा भी होना जिहड़ा भी इंसान हुंदा सारे दे हुंदे आ ते थोड़े फ्यूनरल दी हुण प्री प्लैनिंग तुसी कर सकदे हो जिउंदे जी क्यों करनी चाहीदी है किहनूं फायदा सारी जानकारी हरजिंदर जी देणगे हरजिंदर जी वेलकम
2: हाँ जी सत श्रीकाल जी थैंक यू जी तुहाडे सारे प्यारे लिसनर्स नूं प्यार भरी सत्कार नाल सत श्री अकाल नमस्कार गुड ईवनिंग प्री प्लानिंग बारे तुसी गल कीती है इह बड़ा एक सिंपल जिहा और मैं कहांगा एक बड़ा इंपोर्टेंट डिसीजन है साडे लाइफ दा कि इहदे विच जिहड़ा खर्चा चाहे वह 10 साल 20 साल बाद भी किसी नूं लोड़ पैंदा है पर अज दे प्राइजेस जिहड़े ने उह लॉक हो जाणगे सो मेन तां इक फाइनैंशियल बेनीफिट है ते दूसरा अपनियां विशेस असी रिकॉर्ड करा देने आ प्री प्लानिंग दे विच मेजर कॉस्ट हुंदी है जी इहदे विच विजिटेशन दी जिहदे अंदर कई तरह दीआं सर्विसेज साडा ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम प्रोवाइड करदा है ते नाल ही कैसकेट दी कॉस्ट हुंदी है इह दो मेजर कॉस्ट टोटल कॉस्ट दे विच जिहड़ीआं कंट्रीब्यूटरी हन उह लॉक हो जांदीआं ते 20 साल बाद 50 साल बाद भी प्राइस नहीं वधेगी और फिर दूसरी गल इंपॉर्टेंट के विशेज रिकॉर्ड हो गई और ये पैसा इकट्ठा नहीं देना इट कैन बी पेड इन 1 year 2 year 3 year even 5 years दे विच भी थोड़ा थोड़ा करके दिता जा सकता है ते पहले साल अगर एक साल ही कोई जमा कराता है तो कोई इंटरस्ट नहीं है लेटर ऑन 2-3 साल दे विच इंटरस्ट एलीमेंट एड हो जाता है इहदे नाल एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी अवेलेबल है एज ते डिपेंड करती है कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है हेल्थ क्वेश्चंस दे बेस ते अप्रूव हो जाती है और 5, 10, 15, 20 साल लई डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ पॉलिसी होल्डर उदे मुताबिक ये पॉलिसी भी मिल सकती है सो इहदे लई साडे नाल बैठ के मीटिंग कीती जा सकती है बड़े सत्कार दे नाल असी समझा देने आ सारी गल जिस नाल अपनी फैमिली नाल कोई डिस्कस करके ते ये प्री प्लानिंग वाला डिसीजन लै सकदा सो इहदे लई मैं भी कहांगा कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस है कि नॉर्मली असी इंडिया जांदे हां या किसी होर कंट्री दे विच असी वैकेशनस ते गए हां बिजनेस ट्रिप ते गए हां किसी होर इंपोर्टेंट काम लई गए हां ते असी उत्थे मालक ना करे किसी नाल कोई मिसहैप हो जांदा है तां उत्थों वापस लैण दा बॉडी नूं अज दी रेट च खर्चा $8,000-$10,000 है जिहड़ा कि एक $595 ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ $595 ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਡਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ $5-10 ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕ੍ਰੀਮੇਟੋਰੀਅਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ